मैं बंदा बेखरीद सच्चा है मेरा, मैं बंदा बेखरीद सच्चा है वो मेरा, जो पिंड सब तिसका सब कुछ है तेरा, माने ने माने तू तने तेरा परवासा, बिन साचे अंतिक है तो जानू काचा।

सुरबिन दूजा और न कोई सतीरा खेल अखाड़ा जियो सुरबिन दूजा और न कोई सतीरा खेल अखाड़ा जियो। क्या कहिए किस आस सुनाइए जो कहना सब सब्जी पास सब कुछ किता तेरा वरते सदा सदा तेरी आस जिदे वड्याई ता तेरी वड्याई।

जन को तब अपने कतान जो तू करे करावे स्वामी सा मसलत परवान चरण शरण हम अनाथ ना थकनी अपनी कृपा करे चल कमल नानक आला दे किस दिन आन के पत परमेश्वर गत मरायण तन गोपाल गुण साखी।

हलत पलत प्रभाव सोए कार्य होए तले पूरे हर नाम जप सुख सहजे हर नाम जप सुख सहजे मज्जन होत साधु तुरे आवण जान रे थित पाई जन मरण के मिटे वसूरे गुरु नारायण दा गुरु गुर सच्चा सिद्धनहार गुर टुटे सब कुछ पाया जन मानस सब बनिहार हर गुण गाओ।

गुरु नानक सच्चे पातशाह दे चरण पारस हन। जे लोहा पारस नाल छुआ देईए तां ओ लोहा नहीं रहिंदा, सोना बन जांदा है। गुरु नानक दे चरण ऐसे पारस हन, जे इस दे नाल लोहे नूं भी छुआ देईए तां लोहा भी पारस बन जांदा है। साथ संगत बोलो श्री पारस, पेट पए से पारस।

श्री चंद गुरु नानक सच्चे पातशाह दे वड्डे सपुत्र। आख्या बेटा श्री चंद दसो साडी तली विच की है। ता बाबा श्री चंद जी कहन लगे पिता जी तुहाडी तली ते एक टका ही ता है। हुणे सिख आया इसने तुहाडे अगे एक टका मत्था टेकिया जो तुसी अपनी मुट्ठी विच रख लिया। अपने छोटे पुत्र लक्ष्मी चंद जी कोलों पुछया बेटा तू दस साडी तली ते की है। कहन लगे पिता जी एक टका ही ता है। ता गुरु नानक सच्चे पातशाह ने सारी संगत कोलों पुछया सात संगत तुसी दसो साडी तली ते की है। सारे ने आख्या गरीब निवाज एक टका ही है। ताई सेवा करदे होए भाई लहणा जी उत्थे आए कादी पंड सिर तो एक पासे रख के संगत विच जिथे जगह मिलदी सी बैठ गए। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने भाई लहणा जी नूं कोल सद्या आख्या लहणिया इत्थे आ जी गरीब निवाज लहणिया तू दस बई साडी तली ते की है। सात संगत बोलो श्री भाई लहणा जी दे हाथ जुड़ गए बेनती कीती गरीब निवाज मैं कौन हां के दसा के तेरी तली ते की है। नहीं लैणिया दस बई जो वेखे ही ओई दस। ता भाई लहणा जी हाथ जोड़ के कहन लगे गरीब निवाज आप दी तली ते 14 लोकां दी पातशाही है और जे ए मेर परया हाथ तू जिस दे सिर ते रख देवे ना ओ 14 लोकां दा पातशाह बन सकदा है। सात संगत बोलो श्री हाँ भाई गुरु नानक दे जिसने जिस भावना नाल गुरु नानक नु पूजया गुरु नानक ने उसनु ओ जा फल देता। इत्थे तां सिदक और प्यार दी गल है। गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर ते जितना कोई वड्डा सिदक दा झोल लै के आएगा उतनिया ही बख्शीशां दी दाता गुरु नानक कोलों लै के जाएगा। सत सगत बोलो श्री इस वास्ते पंजवें पातशाह कह रहे हैं।

साहब जी थोड़ी दूर होर गए, फिर परत के वेख्या जे कुछ संगतां जे आ रही हन पिछे पिछे। साहब जी ने नजर कीती, सोने दे ढेर ला देते, सोने दी मोरां ढेर लग्या। आ जेड़े पैसे ते नहीं डिगे, चांदी ते नहीं फिसले, और सोने दी मोरां वेख के उना दे मन गुरु नानक नू छड़ गए। सोने दिया मोरां चुक के करां नू चले गए। साहब जी फिर खोड़ा जागे गए, फिर पिछे परत के वेख्या, अजे थोड़ी जी संगत आ रही है। ता गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती ते हीरे जवरातां दे ढेर ला दिते। आख्या लो वही हीरे जवरात आ लै के चले जाओ करां नू, साडे पिछे आओगे ता कुछ नहीं जे मिलना। जेड़ी संगत थोड़ी बहुत रह भी गई सी, ओ हीरे जवरात झोलियां विच भर के अपने अपने घरां नू चले गए। थोड़ी दूर गुरु नानक सच्चे पातशाह फिर गए, हुण परत के वेख्या ता एक पिछे पाई लैणा जी आ रहे हैं। साहब जी ने पुछया, लैणिया तू नहीं गया वापस? माया दे ढेर लाए, सोने चांदियां दे ढेर लाए, हीरे जवरातां दे ढेर लाए, आ सारे ही झोलियां भर के घरां नू मुड़ गए, तू नहीं गया? भाई लैणे जी दियां डुब डुब अखां भरियां, कहण लगे गरीब निवाज, आ सारे जो झोलियां भर के घरां नू चले गए हन, इन्हां दा पिछे कोई ना कोई है, लेकिन मेरा ता एक तू ही है, मेरा ता तेरे बिना होर कोई नहीं है, मैं तेनू छड़ के नहीं जा सकता। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह नदर हेठा ले आए लैणे नू, आख्या अच्छा हां गरीब निवाज, आ जितने मुड़ गए हन इन्हां दा कोई ना कोई सी ना पिछे, मेरा ता एक तो ही है। ता साहब जी ने आख्या चंगा लैणिया, ओ सामने आ मुर्दा पिया है, उत्ते चिट्टी चदर पई है, आ लैणिया जे हुक्म मनाई ता पहले इस मुर्दे नू खा। भाई लैणा जी सत बचन करके, क्योंकि एक सत बचन दी पढ़ाई भाई लैणे जी ने पढ़ी, जा खड़ोते ते पुछिया हाथ जोड़ के, गरीब निवाज फिर हुक्म करो किस पासियों दी खावा, पैर वालों के सिर वालों? गुरु नानक सच्चे पातशाह ने कहा, लैणिया जिथों तेरी मर्जी। ते जदों हुक्म मन के जदों चदर चुकी, तले कड़ा प्रसाद दी देग पई सी। सात सिगत बोलो श्री। हुक्म मनिए होवे परवान, ता खसमे का महल पाए सी। साहब जी ने भाई लैणे नू कोल सदया, अपने हिरदे नाल ला के भाई लैणे को अंग से लगाकर अंगद कर दिया, अंगद थापिया, और आख्या लैणिया मेरे बाद इस गद्दी दा हुण वारस, इस गद्दी दा मालक तू है। इस वास्ते भाई गुरु नानक दे दर दी सेवा जे किसे ने मनोकामना करके कीती, उसकी ता मनोकामना पूरियां होईयां, और जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर दी सेवा निष्कामता दे नाल कीती, ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इस वास्ते साहिब पंजवें पातशाह बख्शिश कर रहे हन, और की कहिंदे

में सरबत खालसा जी की अरदास, सरबत खालसा जी को सुखाली सुहासी, वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु नाम चेता। साडी तां मंग इत्थे अरदास, साडी दा मुख धुराई इत्थे, गुरसिख दी मंग ही इत्थे खड़ी। एदो अगां तां फालतू मंगा ने, बेकार दिया मंगा ने, क्योंकि इन्हां च रस आ जाना है, दूजिया मंगा नाल कई बार बेरसी पैदा हो जाए। भगत नामदेव जी नूं रस आया तो कहंदे ने मैं हुण इस तों पिछा हटण नूं तैयार नहीं, पाछे बौर ना आवण पावो, अमृत बाणी घटते उचरो, प्रभु दी बात, प्रभु दी गल, प्रभु दी बाणी मैं अपने हिरदे विचों उचरदा हां, आत्म को समझावो, अपने मन नूं समझाई रखदा, वेखी किते इस अवस्था तों थले डिगना पवे, इस अवस्था तों पिछा ना डिग पवे किते, परत ना जावी पिछा। बड़ी मुश्किल नाल कहंदे ने बजर कुठार मोहे है छीना, कर मिन्नत लग पावो। इत्थे इक साखी दा जिक्र छोटा जिहा, परशुराम सुनिया भी मेरा तनख राम ने तोड़ दिता, उन्हें कुहाड़ा चुक लिया, मैं खतरी कोई नहीं रहण दे, मैं छतरी सारे मार देने, कुहाड़ा चुक लिया, घबराहट पैदा होगी छतरिया विच। कोई आया राम जी को, कहन लगा भगवान बचाओ, सारे छतरी मार देने ने उस ब्राह्मण, उन्हें कुहाड़ा चुक लिया, शक्तिशाली बंदा है, जिदा तनख संसार दे बहादरां कोलों चुकिया नहीं जांदा सी, तुसां फड़ के तोड़ दिता, हुण औखा हो गया, मैं खतरी कोई नहीं रहण देना। राम कहन लगे कुछ नहीं हुंदा, ये चले गए परशुराम दे सामने, चले गए परशुराम ने कुहाड़ा चुकिया, इहने चरण फड़ लए, राम जी ने उहनां दे चरण फड़ लए, कहन लगे ब्राह्मण देवता इन्नी करोपी भुल हो गई है, बच्चियां कोलों नहीं हो जांदी, बच्चे नहीं चीजां तोड़ देंदे, तुहाडे बच्चियां कोलों, तुहाडे निमाणे सेवकां कोलों भुल हो गई, गलती हो गई, तुहाडी वस्तु तोड़ बैठे, तुहाडा ओ गांडी तनख मेरे कोलो गलती नाल टुट गया, मैं तुहाडे कोल खिमा चाहुण। ए निम्रता दे बचन, राम दी बोली निम्रता दे बचन। परशुराम दा उठिया होया हथ थले आउंदा चला गया, कुहाड़ा धरती ते आ लगा, राम जी ने पोले हथां दे नाल ओ कुहाड़ा दे हथों फड़ लिया। ए साखी बड़ी प्रसिद्ध है कि बड़ी निम्रता ते प्यार नाल राम जी ने ओहदा क्रोध शांत कीता। भगत नामदेव जी इत्थे कहंदे ने कि मैं मिन्नत करके पैरी पै के ओ बजर कुठार जेड़ा राम जी ने परशुराम दे हथों खो लिया सी, मेरे ते जेड़ियां ताकतां ने तबाही मचाई हुई सी ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने, गुरु की बख्शी निम्रता नाल मैं उन्हां दी ताकत खत्म कर दित्ती, विकारां दी शक्ति खत्म करके उसे निम्रता दे नाल प्यार दे नाल मैं उन्हां नूं अपने जीवन चो बाहर कर दिता है, अमृत वास्ते थां बना ली। बजर कुठार ओ खतरनाक कुहाड़ा, कुठार कुहाड़े कुहाड़े नूं कहिंदे, मोहे है छीना मैं खोले, कर मिन्नत लग पावो, निम्रता नाल प्यार नाल, ते हुण तां मेरी सांझ किन्हां नाल बनी है, रस लैण वास्ते संतन के हम उल्टे, सेवक भगतन ते डर पावो, रब दे प्यार वाले दा ही अदब करदा, उन्हां दा ही भय मनदा, ते उन्हां दा ही सेवक हां। माया जिस दे विच आम तौर ते बंदा फसिया बेरसी पैदा कर पैंदा है, रब तो टुट जांदा है, सत रस तो टुट जांदा है। भगत जी कहंदे ने इस बेरसी तो बचन वास्ते इस संसार ते तब ही छूटो जो माया नै लपटा। संसार दियां बेरसियां तो छोटे छोटे रसां तो पैदा होने वाली बेरसियां तो बचन दा इको तरीका है कि माया दे चक्कर विच ना, माया नाम गर्भ जोन का तेह तज दर्शन पावो। ये जरा मुड़ के जन्म लेना है ना, ये माया का वड्डा कम है, सिट्टा ये चक्कर च पैण का मतलब ही है कि मुड़ के जमण विच आउणा, ते मैं हुण इस चक्कर च नहीं पैंदा, ये चक्कर छड के मैं प्रभु दे दर्शन च लीन होण दी चाह लैके अगे वध रहा। इत कर भगत करे जो जन, जिहड़े इस तरह भगती करदे ने तिन भौ सगल चुकाई है, उन्हां नूं विकारां दा डर नहीं रहिंदा, पिछे दा व्यौ दा डर नहीं रहिंदा। कहत नाम दियो बाहर क्या परमो, बाहर की भटकना है, बाहर रस नहीं है, रस तेरे अंदर है, बाहर क्या परमो, ए संजम हर पाई है, रब नूं मिलना ही, ओदे रस नूं प्राप्त करना ही। क्षमा करना साध संगत, कई बार ऐसा भी होया धर्म दे मार्ग ते चले आ, रस नहीं मिलिया, स्वाद नहीं आया, आनंद नहीं आया, ओदा भी कारण हुंदा है बिरती ना लाउण दी गल, बिरती ना टिक सकण दी गल। एक छोटी जी गल, कहिंदे ने कोई साधु आया, इमारत बन रही सी, एक बंदा पत्थर तोड़ रहा है, कहन लगा की करना है, वो कहंदा तेनू दिसदा नहीं अन्ना है पत्थर पिया तोड़ना। साधु मुस्कुरा के अगे लंघ गया, दूजे को चला गया, कहंदा की पिया करना है, वो भी पत्थर तोड़ रहा है, कहंदा की पिया करना है, कहंदा संत जी ढिड दा पुआड़ा पिया करना।

लक्षण बदल गए, सुलक्षणे हो गए, शुभ लक्षण हो गए। लक्षण कहते ने जो कुछ नजर आता हो, मनुख की अंदर की रहनी जिस वेले बाहर आ जाती है लक्षण कहाउंदी। सतगुरु क्योंकि मनुख की रहनी सुधार देंदे ने, इस करके जबान मिठी हो गई लक्षण चंगा है, चाल ठीक हो गई करते पुरख ताल दिवाया, जिंदगी ताल विच आ गई, बेताली जिंदगी ताल विच आ गई, चाल ठीक हो गई। और एक कहने लक्षण जेड़े ने रफ्तार दस्तार गुफ्तार यही तो गल्लां होंदियां ने जिन्हां तों बंदा पछाणिया जांदा। पग किहो जी बनदा है, भाव इस नूं अपने सजन सजाउण दा ख्याल भी है कि नहीं। और यही वजह है कि लोग तां कहंदे ने पग बननी, लेकिन गुरु का सिख कहंदा दस्तार सजाउणी है, क्योंकि उन्हूं बड़ा ख्याल है कि मेरे सजन दा सवाल है, मैं सजिया सजाया गया ते सज के रहना मेरा काम। दस्तार तो पता लगता है इस बंदे दी रहनी बहनी की है, भाव वस्त्र पाउण तो रहनी बहनी तो मनुख दे अंदर दी सफाई दा ते अपने आप नूं बना के रखण दी रुचि दा पता लगता है, चाल तो पता लगता है इनू तुरना आउंदा है, चाल तो ही चाल चलन दा भी पता लगता है, ते गुफ्तार तो जबान तो बोलन तो भी पता लगता है इस दे अंदर की है। जो जीए होए सो उगवे, जबान तो ही निकलेगा जो अंदर है, अंदर बाणी है ते मुंह बाणी निकलेगी, अंदर प्यार है ते मुंह प्यार निकलेगा, अंदर नफरत है ते मुंह गाला निकलेंगी। सतगुरु की कृपा दे नाल मनुख दे लक्षण बदलते, पर उदो बदलते जो गुरु के मार्ग पै जाए।

जिसनों कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुझे पछाणे। तेरे आ भक्तों को बलिहारा खान सुहावा सदा प्रभ तेरा रंग तेरे।

सतगुरु कौ बल जाइए जित मिले परमगत पाइए सुर नर मुन जन लोच दे सो सतगुरु की।

मेरे मन विच तांग होवे के मैं जाके तेरे दर्शन करां। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह, गुरु अंगद देव सच्चे

उल्टी प्यारी टुरना किते गुरु सच्चे पातशाह वल मेरी पीठ ना हो जाती। सात संगत बोलो श्री तुरते हो पिछली प्यारी अदा।

के बादशाह पिट हो रही है हुण इथो दी मेनू माफी दे दे। ते आपने फिर जाना ब्यासा नदी तो जल दी गागर भरनी सिर ते चुकनी ते फिर सत्कार दे नाल मन विच भावना लिया के आके गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी इश्नान दी सेवा करनी। ते जदो साल बीत जाना ते गुरु अंगद देव पातशाह ने बुला के बाबा अमरदास जी नू एक परना दे देन ते ओ परना लै के बाबा अमरदास जी सिर ते बंद लेंदे सन। सारे साल दी सेवा दा फल की मिलना एक परना, लेकिन कदे मन विच नहीं आया मैनू एक परना ही मिले है एदी सेवा करके। आख्या नहीं आजे जिंद भी लग जावे गुरु दी सेवा विच ता ए थोड़ी है। साथ संगत बोलो श्री सेवा करदियां करदियां अज 12 साल दा आखरी दिन

खुंजाया जो सेवा तो बिना चला गया। आज 12 साल का आखिरी दिन है, आज एडा चखड़ चल रहा है, एडा मीह पै रहा है कि रस्ता नजर नहीं आउंदा। आप पुठी प्यारी तुरते हुए अद्धे रस्ते

गुरु पातशाह इतो हुण पिट हो रही है, माफी दे देनो। ते फिर व्यासा वाल तुर पे, गागर जल्दी भरी सिर ते चुकिया। अज एडा मीह पै रहा है, जखड़ चुल रहे हैं।

अकाल मूर्त अजूनी सहभंग और प्रसाद जब आप सच युगात सच है भी सच नानक कोशी भी सच चक्र के निर्वर्ण जात हर पात नहीं जैन रूप रंग अरगी पीठ भूकर है अचल मूर्तन भव प्रकाश अमित इंद्रान शाहु शाहान गणिज फिर भ्रमण में ही सुनारा सुर नीत नीत मंडन कह सब सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण समझ सतगुरे आयु शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाए हमारी और न सूझे दूजी ठार आर पर तो द्वारी लिखा छोड़िया लिखा छूट है हम निर्गुण ले हो वारी सर्वक्षण सदा मेरवाना सब नाम आधारी नानक दास संत पाछा करियु राख लियु ए बारी

अपने परत करें प्रद बाला अदरा तेरी हटाई नित नानक नाम तिहाई अदरा तेरी वड़ियाई नित नानक नाम तिहाई वाहे जी का खालसा वाहे

साहिब सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह दा जिन्हां ने यह हुक्म सुनिया नंदेड सचखंड साहिब पातशाह दी हजूरी विच सदके जदों तख्त चवर दे मालिक साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब नूं थापिया गया इत्थे प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा ते हुक्म दे अंदर बड़ा फर्क है। प्रेरणा किसे नूं कीती जाए वह प्रेरिया जाए ना प्रेरिया जाए उहदी मर्जी। जो हुक्म किसे नूं सुनाया जाए जां तां हुक्म मन के प्रवान हो जाओ ते जां हुक्म अदूली करके गुनाहगारां दी कैटागरी शामिल हो जाए। हुक्म दा अर्थ दूजा नहीं निकलदा है। या वह मनिया जांदा है ते जां उसकी अवग्या हुंदी है। अवग्या करन वाले नूं जो सजा हुंदी है यह सारा संसार जानदा। हुक्म लॉ एंड आर्डर नूं कोई ना मन्ने ता जो उसका हशर हुंदा है जो देना वर्तारा वरदा है किसी भी अग्ञानी तो अग्ञानी पुरुष तो भी भुला नहीं। कलगीधर पातशाह का यह हुक्म है सब सीखन को हुक्म है कि गुरु मानियो ग्रंथ ते ये हुक्म कलगीधर दा सुन के ते उहदा कहाउण वाला कोई गुरु का सिख किसे देह दे अंदर गुरु का विश्वास रखी तुरिया नहीं। ऐसी कलगी धर दे हुक्म की अदूली करने वाला अपने आप नूं सिख किवें इखला सकता है। उहदा तां इह हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की दे जो प्रभ को मिलवो चाहे खोज इन्हीं में ले। जे गल्लां करनी है जे बातां करनी है जे दीदार करना है ते बह जाओ हजूरी विच सज जाओ आके इशनान करके जनदीय साहब की बख्शिश है भी जदों गल्लां करोगे तुहाडी रसना ती आप ही बोल बोल तुहानू सुनाई जाऊगी ऐं कर आ ना कर आ मार्ग अख्तियार कर ए उत्तम है ए प्रमाणिक है ए ना प्रमाणिक है तुहाडी रसना ते बैठ के तुहानू समझाई जाओ। ऐसा होर चतर दुनिया का गुरु कौन हो सकता जिहड़ा तुहाडी रसना नूं वरत के आप ही तुहानू कही जाए जनदी बोलण वेले तुहानू ही गुरु बना देवे। कैसा विचित्र साहब सतगुरु का एक करिश्मा है ते जिन्हें भी प्रभु नूं खोजना है ते इहदे विच समाया है ते राह दसेगा। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दसणगे भी गुरु अकाल पुरख की प्राप्ति का मार्ग की है आपे दसणगे जो गुरु सतगुरु का जो सिख का आपे बोलणगे। जिहड़े कहिंदे ने इह बोलदा नहीं इह सुनदा नहीं ते मैं समझा भी रब ने संसारक कन्न तां उहनां नूं दित्ते पर गुरु ग्रंथ साहिब बोलदा सुनने वाले कन्न नहीं उन्हां नूं दित्ते। नेत्र तां दित्ते पर साहिबां दी दसे सतगुणां दी जोत वेखण वाले नैण नहीं दित्ते। सुन के अमल करन वाली गुरु ग्रंथ साहिब दा ज्ञान करवाउण वाली शब्दावली सुनदा उन्हां नूं संसारक तौर ते तां इंदिरा करन बख्शिया पर साहिब ने गुरु ग्रंथ साहिब दा उपदेश सुन लई नहीं दित्ता। इस लई सब सिखन को हुक्म है की आओ टेको मथा ते गुरु मानियो ग्रंथ। आओ बीबिया तो शब्द सरवण कर लो ते साहिब सतगुरु पातशाह जी मेहर दा सदका जी चितता करदा नहीं पर बदे रुदे बाबा जी दी क्योंकि सेहत मैं समझदा भी गुरमुख भुल जांदे ने अपना आपा शरीर दा जे हरजस ना हुंदा होवे ते संसार दीआं गल्लां बातां हुण फेर भावें शरीर दे विच उहनां दी सुता आ जाए ते महसूस करन वी सानूं कुछ खेद है पर जे शरीर दे विचों शब्द दी टंकार दे नाल कोई गुरमुख सुना के गुरु का कीर्तन ते गुरमुख गुरसिख महापुरख दी आत्मा नूं उहदे असली टिकाणे ते लै जाए उहनूं शरीरक कष्ट भुल जांदे ने। सो साहिब दी बख्शिश है मेरी तां इह अरदास है गुरमुख आत्मा नूं सतगुरु सदा मेरी आजू ते अरोगता बख्शे तां जो असी संगत करके दीदार करके इन्हां दी कमाई दा किश्मा वेख के कदे साडे मूर्खां दी भी सुरत इस पासे नूं पलटे ते असी भी कुछ अपना परमार्थ दा धन पल्ले बन के जिस मार्ग दे उत्ते हर एक ने समय समय अपनी वारी सिर तुरना असी भी अपनी वारी सिर तुरन तो पहला कुछ ना कुछ पूंजी विहाज लईए ते जिहड़ी सानू उत्थे कम आ सके। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।

गुरुदेव बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन ना कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था, हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोली, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती, यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतनी निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले गए।

दिना विची सिखाने शंकरगढ़ मिचनी बालासार ते पिशौर दे किलियां नू जित लिया। सिख राज दिया हद्दा काबल वालू वदन लगिया। चार चुफेरे सरदार हरि सिंह नलवे दी बहादुरी दिया तुम्मा पै गईया। नव्या किलियां नू जित पुराणिया दी मुरम्मत कराई। पठाणा विच हलचल मच गई। ते फिर एक रोज सरदार हरि सिंह ने हल्ला बोल दर्रा खैबर दे बूहे जमरौद दे किले उत्ते केसरी झंडा जा चलाया।

जमरौत दी जंग विच सिखा ने पठाना नू ऐसी मार मारी कि पठान कन्ना नू हथ ला तौबा तौबा कर उठे। काबल दियां गलियां बाजारां विच नलवे दियां गल्लां होण लगियां। नलवे तो डरदे पठान सूरज डुबदे सार घरां नू जंदरे ला अंदरी लुक जांदे। चार चुफेरे मरियां वर्गी चुप छा जांदी। अपने रोंदे न्यारियां नू चुप कराउण लई पठानियां इउं डराउंदियां।

0: सिख राज दिया हद्दा, दिनों दिन काबल वालू बद दिया देख, पठार सोची डूब गए।
1: अमीर काबल दोस्त मोहम्मद खां घबरा गया।
0: सरदार हरि सिंह नलुए दी चढ़त, पठाना नू अपनी मौत दिसण लगी।
1: कई हजार मुल्किया कठा कर शमी खान ने अपने दादे परदादे दी बहादरी दे वास्ते पौंदिया इंज आखिया।

0: 28 अप्रैल 1837 दा सूरज चढ़दिया ही 1000 सिंघा ने पठाणा नू जा ललकारिया। सत श्री अकाल दे जयकारिया नाल आसमान गूंज उठिया, तलवारा पिड़िया,
1: धरती लहू लुहान हो गई,
0: लोथा ते लोथा चढ़ गईया। गुरु दे सिंघा ने ऐसे हद दिखाए कि गाजिया दे दंद जुड़ गए। दूजे दिन तोपा दे गोले दागे, रात पैंदिया ही जमरौद किले दी सज्जी कंध विच पाड़ पै गया।
1: हुण महा सिंह अगे तीन काम सन, किले दी राखी करना, कंधा पाड़ पूरना ते पिशोर बीमार पए सरदार हरी सिंह नलुए नू सुनेहा पहुंचाना।
0: सिंघा दे रोक दिया बीबी हरशरण कौर जत्थेदार तो चिट्ठी लै पेश बदल, किले विचो निकल तुरी। रातो रात पेंडा मुका, पिशोर च सरदार हरी सिंह नलुए नू जा चिट्ठी पुचाई। पढ़ के सरदार दिया अखा विच खून उतर आया, दौड़े फरके तलवार दे मुठे ते हथ गया। ऐ सोच के कि मेरी जिंदगी ही सिख राज दी जिंदगी है, ओ उठ बैठा। खालसे दी तलवार आज हिंदुस्तान दा इतिहास बदल सकती है। मैं जान नालों सिखी शान नू प्यारी समझदा हां। ऐ सोच दिया ही चट सिंघा नू इकट्ठे कर सरदार हरी सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

नगाड़े ते चोट लगी, खंडे तलवारा ते बर्छे लिशके, केसरी निशान चूले, कोड़िया दे पौड़ा नाल, पहाड़िया गूंज उठिया। दस कु हजार सिंघा ने जमरौद वालू कूच कर दिता। सरदार हरी सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

0: 3 अप्रैल 1837 दा सूरज चढ़दिया ही सरदार हरी सिंह नलुए ने सिख फौजां समेत बोले सो निहाल दा जयकारा गजा शम्मी खां दी फौज दा जा टाकरा कीता। तलवारा बरछिया विच्चों मौत दे चंग्यारे निकले, लोथा नू लिताड़ दे सिंगा दे कोड़े अगे वदन लगे, मनुखी सिर मतीरिया वांग पैरा विच रुलन लगे।
1: धरती लाल सूही हो गई। सरदार हरी सिंह नलुआ ते शम्मी खान मैदाने जंग विच एक दूजे नू एउं टकरे

0: सरदार हरी सिंह ने फट नू कुट के बन लिया, कोड़े नू जमरौद किले वालू मोड़ दिता। किले विच पहुंचदिया ही जत्थेदार महा सिंह ने नलुए सरदार नू कोड़े तो ला पलंग उत्ते लिटा दिता। तकलीफ वध दी गई,
1: अद्धी रातों शरीर निढाल हो गया, जान साथ छड़न लगी, पर सरदार दे मुख ते लाली उसे तरह डलक रही सी, अजे भी सज्जा हाथ तलवार दी मुठ उते ही सी।
0: मैदानों परत के आए सिंगा तो लड़ाई दा हाल पुछया, जित दी खबर सुन गज के जयकारा बुलाया।
1: ते फेर सारे सिंगा वाल तक सरदार हरी सिंह नलुए ने हौसला दिंदे आखिया,
2: खालसा जी, मैनू अकाल पुरख दा सद्दा आ गया है। मैं पंथ वास्ते जमया सी, ते पंथ वास्ते शहीद हो रिया, मेरे पिछो घबराउना नहीं, तुसी खालसा राज दे राखे हो, खालसा जी जित्ता जारी रखनिया, पठान मुड़ के हिंदुस्तान वाल मुंह ना कर सकन।
1: एह कहंदिया ही सरदार हरी सिंह नलुए ने अंतम सुनेहा इंज दित्ता।

माता जी का कोरा जवाब सुन के जलाद परत आया, कंध मुकम्मल तैयार हो गई, साहिबजादे असहते अकह कष्ट सहारदे होए शहीदी पा गए, धरती कंब उठी, आसमान डोल गया।

जो शब्द आप श्रवण कर रहे हो गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा शुकराने दा शब्द है सुलही ते नारायण राख समे दा बादशाह जहांगीर जिसनू ए गल चंगी नहीं सी लगदी के गुरु नानक दे दर दी दिनो दिन वड्याई वधदी जावे गुरु नानक दे दर ते जिथे गुरु के सिख आके जुड़दे सन हिंदू भी और मुसलमान भी रूहानियत प्राप्त करन लई हजूर दे चरणा विच आ जुड़दे सन इस दे मन विच बड़ा दुख सी के गुरु नानक दे दर दी दिनो दिन वड्याई वधदी जा रही है अपने शीपा सलार नूं हुकम दिता भई तू कश्मीर नूं जा रहे हैं जंग करन लई ते रस्ते विच गोंदवाल नाम करके पिंड है जिथे गुरु अर्जन देव रहिंदा है उस नूं भी सोधदा जाई उचारण करो श्री वाहिगुरु ते जदों ए पता गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं लग्या ता सिखा ने बेनती कीती जो इस शब्द विच अंकित है प्रथमे मता जे पत्री चलावो द्वितीये मता दोए मानक पहुंचावो तृतीये मता किश करो उपाया मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया हजूर अगे बेनती कीती गई के महाराज जे हुक्म करो ता बादशाह जहांगीर नू पत्रका लिख दईए जां दो सियाने बंदे भेज दियो कुछ उपा जरूर करो ता धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया नेत नाल जदों बड़े हंकार दे नाल सुली खां चढ़ाई करके आ रहा सी ता इस दा घोड़ा ऐसा पागल होया बलदे पठे विच जा वड़िया ते सुनी समेत स्वाह हो गया इस शुकराने वजो हजूर ने शब्द उचारण कीता सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ